0: दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तू करता करना में ना ही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहो। जात मह जो जोत मह जाता कलकला भरपूर रह। तू सच्चा साहेब सिर सवाल्यो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया।
1: सो दर राग आसा महला पहला।

जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा।

जकिनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकट्ठा।

पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ।

आरती शब्द कीर्तन अखंड कीर्तन आदि के गुणा का गायन हो पातशाह जीओ नाम सिमना अभ्यास होने आप जी ने कृपा मेहर की दृष्टि की अपने सेवका पासों आप जी के गुण गाने की सेवा ली धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जीओ आप जी का महान पुरब जो सारे संसार मनाया जा रहा सतगुरु जी आप जी दियां संतां ने बड़ी श्रद्धा भावना नाल तन मन धन नाल सेवा की सतगुरु जीओ आप जी के गुणों का गायन करदियां होईयां भुलां गलतियां बख्श लैणियां अगे तो होर श्रद्धा भावना सहित आप जी की बाणी पढ़न की सेवा करन की दात बख्शिश करनी आप जी दियां प्यारियां संगतां पवित्र घरां च बैठे गुरु घर तों लाइव कथा कीर्तन सरवण करदियां गुरु घर वास्ते तिल फुल माया भेटा कर रही ने भाई हरविंदर सिंह जी रंधावा समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला की अरदास बेनती करते हैं गुरु घर वास्ते $250 माया भेटा करते हैं सतगुरु जी अपने खजाने प्रवान करते हैं अपने धर्म करोन नाम की दात गुरु सिखी जीवन बख्शिश करना जी काका पिनाक सिंह के जन्मदिन की खुशी अंदर परिवार वालों अरदास बेनती है सतगुरु जी मेरा बख्शा करो बच्चे नूं।

राखो शरणाई। अहंस सहज सुभाए, दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण हो वैसे पुत कसम दी, हरसों पुरसों करती है उदगिते सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म हो वैसे पुत कसम दी, नूर अरसों पुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। पातशाह सिरसा हां दे साहो, जिस पास बैठे आसो ही है सब नादा वेसा हो, क्या सो ही है सब नादा वेसा हो। सतना वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला चौथा। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे रहा। हर के गुण हर पाम दे, से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाणा मन्या तिन कुम कुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलहारी। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाइये गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ध्याए दे ते जन परवाना, तिन विट्टो नानक वारिया सदा सदा कुर्बान। साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से ती फिर हड़ी तिना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कुम कुम जाया, ओए आप छुटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया। गुरु प्यारे हर सेवया, गुरु तन्नो गुर हर मार्ग दसया, गुर पुन वड पुन्नो। जो गुर सिख गुर सेम दे से पुन पराणी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बान। गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पहिया, हर दरगह पैनाइया हर आप गल लाई। जो गुरमुख नाम तिहाए दे तिन दर्शन दीजे, हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजे। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे न चेते ओ जम पकड़ चलाई। जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय उरतारे, तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे।

आग है परवान। अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस होए, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसे बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जोवर ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख तैसा तन नाओ। आपे करण करा मन जोग, प्राभ भावै सोई फन होग। पसरियो आप होए अनत तरंग।

सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब काव विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कह रहे कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश पर माहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता अर्चना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंकी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख नपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिरशत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्थशास्त्र कई कोट कीने कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्य किन्द्र पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच सबते निरह सब होते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर है कई कोट बहु जोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट का लह थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह भाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट पए बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कह को जनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्थार कई बार पसरे पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहु पात प्रभते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर भय सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है अपने जन को सास सास सुमारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करण जोग जोतिस पावै सोई होग खनमै थाप उथा पनहारा।

नानक प्रभ कै सतगुर रबान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत समान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्म मंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै तनवंता होए क्या को गर्भै जा सब किस तनवंता होए कर गर्भावै तृण समान गज संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सबते आप जाने बलवंत खिरमै होए जाए पसमंत किसे न

जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सुजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हां छूटै सहस खटे लख कौठ धावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के करै नह तृप्त आवै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस कीनो सो अपने रंग

मछली तड़फड़ाए। संत कदों की भूखा नहीं राजे, जो पावक इधर नहीं त्रापे। संत कदों की छुटे केला, जो बार तिन खेत माहे दुहेला। संत का दुखी तरम ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत। किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया।

दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से सलोक। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पो जाए। अष्टपदी मानव की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है भगवान।

रोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागे कोई, उस्तत मन में का निरंकार, कर मन मेरे सद्व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहे

तिस की कटिय जब की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लगे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे जैसा साथ ऐसा दृष्टाया अपने कारज में है आप समाया सो

तारीफ है सृष्टि आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रचताप उताप अविनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलग

नाम। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल कट सो है। तनवंता होए क्या को गर्भ, जा सब किछ तिसका दिया दर्भ। अत सुराजे को कहावे।

सदा अरोग ज्यो मंदर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्तमन ज्यो पाखा नव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है।

तुत सच तार, जो कश करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस्त आई तेरे संग, लपटर्यो रस लोभी पतंग। राम नाम जब हृदय माहे, नानक पत से ती कर जाहे। जिस वक्कर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया।

तन तन कहे सब कोई, मुख उजल हर दरगह सोए, ए वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलहारे, चरण साध के तोय तोय पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, अनेक बिघनते साधु रखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे।

सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सच हृदय सचायाकार सच वर्तै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिसते परे नहीं किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन साथ तेरे की चरणी पाओ नानक के मन ए अनुराओ मनसा पूरन सरना जोग सो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सर ग्रस्त में पोगी त्याए त्याए पगते सुख पा

है फिर आवे जाए, पूछ नीच किसके अस्थान, जैसा जना वै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे इक रंग, नाना विद की नो विस्तार, प्रभ बिना सी एक अंकार। नाना चलत करे किन माहे, पूरे ओ पूरन सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मण, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले अकाल।

दर्शन गत पाए रूप सत जाका सत्य स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत्य जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न भूत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न भूत करत विचार करते कि मित ना जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बुझा तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदारत ले ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग ए

पे सच अष्टपदी, चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पे कन्हार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पहचान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निर्भो होए बसाना, जिसते उपजा तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पिन न कहना जाई, बुझे बुझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक

दिस प्रगटाया निकी कीरी में कर रखे पसम करे लस्कर कोट लखे जिसका सास ना काटते आप ताको राखत देकर हाथ मानत जतन करत मोपात जिसके कर्तव्य थे जात मारे न रखे अवर न कोई सरब जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलग विडानी बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत ए मंत्र तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर

मंत्र नाम में नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम को नानक जन कै सतकाम। बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की निदात करे भगत आतन कह जाए प्रभ अपने सो रह समाए जो हुआ हो बत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने।

सर्व दुख का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवर से आनप सगली चार,

नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत न होए नहकामी, तिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर ना हो, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जीव का दाता।

वड पागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तम पतिया ने पूरा गुरख यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नानक जिस पावे तिस लय मिलाए।

जाने निराहार निर्भय सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सदबलहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का ना ही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक पर मोह दुख ते नास्ते।

पूरण उपदेशे पहुंचू का निर्भो होय बसे सगल ब्याद मन देखे लसे जिसका साथ इन कृपा तारी साध संग जपना मुरारी थित पाई चुके प्रभगवन सुन नानक हर हर जसमन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगात साथ के संग रच रचनाए अपनी कल धारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक ए संसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रित में उतारो करण कारण सो प्रभ समरत दृढ़ कर गहो नाम हरवत।

जिस धन को चार कुंड उठतावे सो धन हर से बाते पावे जिस सुखो नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पलि करनी सा शोभा पज हर की सरनी।

गए परवान, मन पर बोधो हर कहनाई, दै दिस तावत आवे ठाई, ताको बिगन न लागे कोई, जा कह हृदय बसे हर सोई, गलता दी ठाडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रकाश, तित कर जाए बसे अविनाशी, कहु नानक काटी जमपासी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास भेद बिचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटा वे मूरत मना, सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहूं तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहूं कवन छुटकार, असस्थी रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिंदी ए तिस बुझना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लहे इयाने, भगत बिना बो डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहिम, जन्म जन्म के किल बिक जाहे, आप जपो अबरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाव, सह सुबाय नानक गुनगाओ, गुनगावत तेरे उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं बिक फैल, हुए अचिंत बसे सुखनार, सास गुरासर नाम समार, छाड़ से आनब सगली मना, साध संग पावे सच सना, हर पूंजी संच करो बिहार, इहां सुख दर गए जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कौन नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे, एक अस्के गुन गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर हो प्रभ्या, अनेक विस्तार एक ते पए, एक अराध पराचत गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक इक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाई, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाई, नानक की प्रभ बेनती, अपनी पंक्ति लाए अष्टपदी, जाचक जन चाचै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साध जना की मांगो तोर, पार ब्रह्म मेर सरदापुर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, साथ साथ प्रभ तुम्हें त्यावो, चरण कमल से लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नित, एक ओट एक ओ आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दिष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोई, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाऊ साध के संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगासन दिन निवलाग, बड़ भागी जप या प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सदगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ हुए दयाल, सेवक की नो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख प्रम गया, इच्छपुनी सरदार सब पूरी, रब रहया सत्संग हजूरी, जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जे बिकते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गाढ़े, गुर पूरे तत एह बुझाया, प्रभ अपना नान जन त्याया, साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपावो, भगत पाए तर यह संसार, मिन भक्ति तन हो सीचार, सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूटत जात पाए विश्राम, सगल दुख का हो वतनास, नानक नाम जपो गुणदास, जी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंतन अंतर एहि सुवाओ, नेत्रो पे एक दरस सुपोए, मन बिगसे सात चरण तोए, भगत जना कै मंतन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर

आदि पुरख कारण करता भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन ही तम निर्गुण आर नीच जान। नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुख मोह पाए। एक निमक हर के गुण गाय अनेक राज भोग भोग बढ़ियाई। हर के नाम की कथा मन पाए वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परिगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जा पष्टपदी। जब कार्य कृष्ण दृष्टिता पाप उन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समात बैर विरोध के संकमात। जब इसका बन चिन्ह जापत तब हर सो को किसे व्यापत। जब आपन आप आर ब्रह्म तब मोका किस को बत परम। आपन खेल आप बरती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनि तब बंद मुकत को किसको गने। जब एक है हर अगम पार तब नरक जुरु को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सिर्फ सकत कहो किच्छाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कवन डर कवन कत डरे। आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अबनासी सुखापनासन तय जन्म मरण को कहां बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभगत गोचर प्रभेका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेका। जब नाथ नंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आपिय चरजा नानक अपन रूप आपिय प्रजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश है चल छिद्र लगत को कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भोग कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार नानक कर देखा नहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे परवीन तय भेद कते कहा कूचीन। जब अपन आप उतारे तो सगन अब सगन कहाँ बिचारे। जय अपन ऊंचा अपने आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिसम बिस्मन बिसम रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल छेद अपेद समाया उहां किसे बे आपत माया। आपस को आपे आदेश तय गुण का ना ही परवेश। जय के एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लग है चिंता। जे अपन आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा। जे आप रचियो पर पंच अकार ते गुण में कीनो विस्तार। पाप हुन ते भई कहावत को नरक

सबके मध्य लिप्त रहे। जो किश कहना सो आपे कहे, आज्ञा वे आज्ञा जाई, नानक जा पावे तले समाए। इससे होए सुना ही बुरा, और कहूं कि ने कश करा, आप भला कर तूत अपनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। इसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक इहु जान, जो जाने तिस दास खोए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का ए स्वाव, जन कै संचित आवे नाव, आप मुकत मुकत करे संसार, आप मुकत मुकत करे संसार।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्राह्मण निकट कर पेख सास सास से मरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह आसनित त्याग उतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सात संग गन सागर तरो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज अनंत सात संग पंच परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित वो नारायणे एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम सलोक सात के बचलम लीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कह मन लागा हर रंग जय जय सबद अनाहत वाज जय सुन सुन अनत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत के माते नानक उदरे तिन के साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सुपर सन पहे गुरुदेव पूरन हुए सेवक के से आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान।

विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबके मद सगल से उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने।

गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साथ संग मिटे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई सात चरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत जिन्हें आवे हर प्रभ जीत जन्म मरण तक दुख निवारे।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार तुपै चुप न होवई जे लाय रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होवे ता एक न चलै नाल किव सचारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल।

तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए। नानक हुक्म जे बुझे ता हमे कहे न कोए। गावे को ताण होवे किसे तान। गावे को दात जाने निशान।

कहते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जे तिस दी वडियाई जो

नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पत चोली, ध्यान की करें बिभूत। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथ

जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राते रुते थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल,

तिथे सोहिन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जप जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड

तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथी यार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल कड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल।

नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बृहद्बुद्धदा बृहद्कर्ता अधो ऊर्ध्व अर्धं अगं उग्रहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेद्यपेदीयनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं अपयंग प्रयात छांद अगादे अबादे आनंदि स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमस्तुंग निरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग अगंजे नमस्तुंग अपंजे नमस्तुंग अकाले नमस्तुंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे त्रिपंगीय नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे स्मसं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धन्वासी चरपण शांत त्वे प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं

मुनगन प्रणाम निर्भैन काम अत दुत प्रचांड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अनडंड बाढ़

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र जाने चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छांद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र है परतीस अदिश अदृश्य अकृश भगवती शांत त्वे प्रसाद कथते कि आशिज देसा है कि आज पिस है कि आगंज कर्म है कि आज परम है कि आज लोक है कि आदित सुख है कि अवधूत भरण है कि विभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि तरमंग तुझा है कि अशोक भरण है कि सर्वा अपरण है कि जगतंग कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपम अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजिर जा

नमो नरक नाशे सदा प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्मंग परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न तात है न माता है न जाता है न पाता है नरसाक्षी श्रीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत।

नहीं चक चार लवैया साहेब श्री सब को सरनायक जाचकन 101 दिवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थापत पैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वह पुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग छत्र सबोया अवलोक।

परेंगे ब्रह्म में सर्वभिषण सच्ची पत अंत फसे जम्बास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है भगत नर फेर न देत रहेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो नहात फ्री लिये सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो।

कहूं पछा को शीश निवायो। को बुतान को पूजत है, पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्ज सब ही जग, श्री भगवान को पे।

पच्चा श्री अस्तोज जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

नमस्कार दिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हाँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन

दास गोविंद दास तुहार। राम करी महला तीजा आनंद इको अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दों ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगमा गोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जिय जंत सब खेर तेरा, क्या को आख वखाण है। आख है तां वेखै सब तू है।

0: कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एह हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसना दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्ति आप उपाय कह, करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सिंह होवे एक सिंह मिलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी ततै सार न जानी। गुरु बाजो ततै सार न जानी, तेहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत् पाए जिसनो अनंदन हरले विलागे, जाग रहन विहानी।
1: माता के उदर में है प्रताल के सो के मन विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वरदाता। जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो कह पोए सखी, जिसनो अपने लिव लावे अपने लिए वापे लाए। गुरमुख सदा संभालिए, कहना न केवल दाता सबके मनो विसार। जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करते खेल चाया। जात इस पाणा था जमया परिवार फला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरे, एह माया जित हर विसरे, मो उपजे पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिन विचे माया पाया। हर आप मूलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विटो। रहे लोक विल लाए ऐसा सदगुरु, जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाए। जिदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए, हर आप मूलक है पाग दिना के नानका। जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा। सतगुर तेरा जानी हर हर नित जप्यो, जीव लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन। तिना मिलिया जिन हर अपे पाणा, कह नानक हर रास मेरी मन होवा वण जारा।

कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी। तापु जग में आया मन चाओ भया प्रभ आगमन सुनया। हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया, हर गाओ मंगल नित नित सखी सोग दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सफागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जाने हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया जग में आए कह क्या तुद करम कमाया, के करम कमाया तुद शरीरा। जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया गुरु प्रसादी। हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक यह शरीर प्रवाण होवा। जिन सतगुरु से चितलाया, नेत्रो मेरे हर तुमने जो धरी, हर बिना वर न देखो कोई। हर बिना वर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया एव विस संसार तुम देख दे। एव हर का रूप हर रूप नदरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जा वेखा। हर इक है हर बिना वर न कोई, कह नानक नेत्र अंत से सतगुरु मिले दिव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सतबाणी जित सुनी, मंत्र हरिया होवा रसना रसमाणी। सच अलख विडाणी ताकि गत मित कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो सच है सुन नैनो पठाए। हर जीव गुफा अंदर रखे बाजा पौन बजाया, बजाया बाजा पौन द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए, पावनी कना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव ने दिता अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जीव गुफा अंदर रखे वाजा पौन बजाया। एहो साचा सोयला सचे कर गावो, एहो साचा सोयला सचे कर गावो। गावता सोयला कर सचे जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे। गुरमुख जिना बुझावे, एह सच सबना का कसम है, जिस बख्शे जिस बख्शे सोजन पावे। कह नानक सच सोयला सचे कर गावे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार। ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जान। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुरु रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहत तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुरु रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तुम मात पिता हम, तुमरी कृपा में।

बोलो जी, तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको विघन न को लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास इको ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सिंह सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जी जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नावे ताए सब थाई हो साए दसवीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हो साए दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दा जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहा साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई देग वाही देग के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे नाल तां

जो हर नाम ध्यान दे तेजन परवाना तिन विट हो नानक वारिया सदा सदा कुर्बान। साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे जो गुरुमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से ती फिर हड़ी तिना जी प्रभ ना ले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरुमुख प्यारा सेवया तिन को कुम जाया ओए आप छुटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया। गुरु प्यारे हर सेव्या गुरु तन गुरु तनो गुरु हर मार्ग दस्या गुरु पुन वड पुनो। जो गुरु सिख गुरु सेम दे से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पहिया हर दरगह पहनाइया हर आप गल लाइया। जो गुरमुख नाम ध्याए दे तिन दर्शन दी जय हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीज। पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे न चेते ओ जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेत्या हिरदे उर तारे तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुरु भेटिया रंगरलियां माने। सतगुरु दाता आखिए तुस करे पसाओ हो गुरु विटो सदवारिया जिन दितड़ा नाओ। सो धन गुरु शाबास है हर दे सनेहा हो वेख वेख गुरु विगसया गुरु सतगुरु देहा। गुरु रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना भुख सब जावी।

0: सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवान पिछे पाइया नानक तोलिया जप महला पहला
1: सुज नानक सच्चा विख सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर क्रम जना कुदुत पाया।

मंजूर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ल आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में बेद सरबण हुआ नाम खुदा यला पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पुराणिया वल किया। चारे वेद हो इस चार पण गुण तीन चार विचार भाव भगत करनी सदाए तौरान मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिठो हरे।

0: नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
1: नाय मन्नाय पतु पुजाय साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सूत।

सूतक पवै रसोए नानक सूतक एव न उतरै ज्ञान उतारे तोए। महला पहला। मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक।

तिस भाणा ता मन वसाइया, कर हुकम मस्तक हाथ धार, विचह मार कढ़िया बुरे आइया, सहत उठै नौ निद पाइया। सलोक महला पहला, पहला सुचा।

पौड़ी। आपे ही करना कियो, काल आपे ही तय तारी है। देखा है कीता अपना, तार कच्ची।

हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जग उपजय बिनसय कहो मोहे समझाया देव करहो दया मुहे मार्ग लावो जित पै बंधन टूटै।

मन सुखावै। ओए पापी सदा फिरै अपराधी, मुख हो अपर सुखावै। सदा सदा फिरै अभिमानी।

खरा सुखाला पहराओ नहीं दगली लगे ना पाला रहाओ। बाल ते सुबापै जे नहाओ जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया। पंच मार पावा तल दीने हर सिमरन मेरा मन तन पीने।

रहाओ। बैठ सिंह घर पान लगावे, कीस गलौरे ल्यावे, घर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत बियाहन चलिया सोए।

संतो कीटी पर्वत खाया, कछुआ कहे अंगार पे लो राव, लूकी शब्द सुनाया। आशा बटुआ एक बहत्तर।

आसा। हिंदू तुरक कहते आए, किन इराह चलाई, दिल मैं सोच विचार कवा दे, भिसत दोजक किन पाई। काजी तै कवन कतेब बखाने, पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सख्त स्नेह कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पहाई, जाओ रे खुदाए मोहे तुरक करेगा, आप नहीं कट जाई। सुन्नत किए तुरक जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार ना छोड़े, ताते हिंदू ही रही है। शाड़क तेब राम भज बौरे, जुलम कर

आओ तन कर मटकी मन माहे बेलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोवना मन का बिचारा गुर प्रसाद पावे अमृत तारा।

रहाओ। ब्रह्म पाती बिसन डारी फूल शंकर देओ, तीन देव पर तख तोर है पर है किस की सेओ। पाखान गढ़ कै मूरत कीनी दे कै शाती पाओ, जे एह मूरत साची है तो गढ़न हारे खाओ। पात पहत अर लापसी कर करा का सार, भोगन हारे भोगया इस मूरत के मुख शार। मालिन भूली जग भुलाना हम भुला।

चाल चलो कहत कबीर सुनहो रे संत आन तान कछु लै न गयो। आई तलब गोपाल राय की माया मंदर छोड़ चलो। आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू पलग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा। अह रखवाद न की जय रे मन सोकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ। कुमार है एक जो माटी गूंदी

उगत कह तन मेरा जम का डांड मूंड मह लागे खिन मैं करे नबेरा हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई जो तिस भावे सत कर मन भाणा मन वसाई।

चेत ढाल पासा, जीवन की आस कर जम निहार सासा, बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी रहमत करन, पढ़ी सुनी गुरबाणी सतगुरु जी सोध करके सचखंड दर प्रवान करते हुए सभना जियां दियां हाजरियां प्रवान करके दरों करों गुरसिखी की दात, नाम की दात, तंदुरुस्ती दात सतगुरु जी बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुणती अरसो गुणती जल जो गुणती बहुपात प्रचार सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गोहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभ के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभ की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रभ के चरणों जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल उदित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरवण प्री सत्कारयोग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासों अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दे विचार ओ सरवण प्री गुरु इतिहासिक इतिहास सरवण प्री दा सलो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार के भी कलेश मुक जाते हैं, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी बस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दिखी मां, गुरु बख्शिश करे रहमत करे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

साहिब जी सब किश आपे आप है, दूजा अवरना कोय, ज्यों बुलाए त्यों बोली है, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। हर की वडियाई हो आख ना साका, हो मूर्ख मुग्ध नी जान, जन नानक को बख्श लै मेरे स्वामी।